जी हर जुग जुग भक्त पाया पैज रखदा आया राम राजे नाखश दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया अहंकारियां निंदका पिठ दे नाम दे मुख लाया जन नानक ऐसा हर सेव्या अंत ले छाया श्लोक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला पहला दुख दारू सुख रोपया जा सुख ताम ना होई तू करता करना मैं नाही जाहों करी न होई बलिहारी कुदरत वसया तेरा अंत न जाई लख्या रहो जात में जोत जोत में जाता अकल कला भरपूर रहा तू सच्चा साहिब सिफत सवाल्यो जिन कीती सो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो कुछ करना सो कर रहा सो दर राग

जंदन करके कीती रात खसम सारे ते कम जात नानक नावे बासनात राग गुजरी महला चौथा हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुरपास हम कीरे किरम सतगुर शरणाई कर दया नाम प्रगास मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम प्रगास गुरमत नाम मेरा प्राण सकाई हर कीर्त अमरी रह रास राव अर्जन के बड़ भाव वडेरे जिन हर हर सरदा हर प्यास हर हर नाम मिले तृप्तस मिल संगत गुण प्रगास जिन हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन धुर मस्तक लिखिया लिखास धन धन सतसंगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मन चित्वे उद्दम जा हर हर ज्यो परया सैल पत्थर में

अले मन एक ना चेत समूढ़ मना हर विसरत तेरे गुण गले आ राओ ना हो जदी सदी नहीं पड़िया मूर्ख मुगदा जन्म पिया प्रणवत नानक तिनकी सरना जिन तू ना ही विसरिया सा महला पंजवा।

जमन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो, आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार, तिस ही को हमारी सगल प्रजाजने आप सुवारी, सेवकन को सब गुण सुख दियो, शत्रन को पल मोहबद कियो, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा, दृष्ट कर फूला संतन, दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, कट कट के पट पट की जाने, जब उदकर्क करा करतारा, प्रजा धरत तब दे अपारा, जब आकर्ख करत हो कबहू तुम मैं मिलत दे, तर सब जेते बदन से सब तारे, आप अपनी बूझ चारे, तुम सब ही तेरा

रच दीनी। कौं फूल राजा वै बैठा कौं सुन प्यो शंकर कैठा सुगरी शिष्ट दिखाए अचंभव आजीवा स्वरूप स्वंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिख वार सिख संगरो दुष्ट जिते उठव तुत पाता सकल मलेश करो रण काता। जे अस्तु तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुख तुभाय मरे पुरख जवन पग परे त्यारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याई है ताके काल निकने है रचावे ताए सब काला। दुष्ट रिष्ट ने तत्काला कृपा दृष्ट तन जायन हरियो ताके ताव तन कमो हरियो रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई। दुष्ट शास वै सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल पास ते ताए उबारा।

सर्व ठौर मोह साई दुष्ट दोग ते लियो चाय कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सवराता केलवे सगल दे को हरता दुष्ट दोखियन को चय करता श्री

काल पुरुष की दे मो कोटक विष्णु महेश कोट इंद्र ब्रह्मा के दे रव सस क्रोर जलेश दोहरा

जो ए कथा सुने अर गावे दू पाप ते निक नावे बिष्णु भगत की ये फल होई याद ब्याश वे सके न कोई सम्मत 1755 हाड़ बदी प्रथम सुदामन तो प्रसाद कर गण सुधारा भूल परी लो लो सुधारा दो हरा नेत्र तुम के चरण तर स्तंद्रव तीर्थ रंग श्री भगवत पूर्ण की ओर और कथा प्रसंग साध साध जानो नहीं बाद सुबाद विवाद ग्रंथ सकल पूर्ण कियो बहुत कृपा प्रसाद सोइया पाएंगे जब ते तुमरे तब ते को आंख तेरे नहीं आने राम रहीम पुराण कुरान अनेक मत एक न मान्यो

साध जना के संग पाव जल तारियन। साकत निंदक दुष्ट खिन माहे बेदारियन। तिस साहिब की टेक नानक मने माहे। जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। तिस साहिब की टेक नानक मने माहे। जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई त्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरियाए गुर नाम निधियावे ताए। सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दी दारदा ध्यान तरके बोलो जी। पंजा प्यारियां चौं साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिना नाम जपिया बन छकिया देख चलाई तेग वाही देखे अंडड गीता तना प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलो जी। जिना सिंह सिंगणियां ने धर्मे सीस दिते बंद बंद कटवाए खुपरियां लवाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरिया नाल चिराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं आ रहा सिखी के सां सुवासां सांग निभाई तिना दी कमाई दा ध्यान तरके बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान तरके बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू चेतावे चेते आवन गा सदगा सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब तातर छै रियायत देख तेग फतेह बिरत की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसा दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखा दा मान नीवा मत उची मत दा रखा अकाल पुरख वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जियो श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं भी छोड़िया गया खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। ये निमाणियां दे मान नितानियां दे तान नियोटियां दी ओड़ सचे पिता वाहिगुरू साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी ने पार मेहरा बख्शे कृपा की आप जी की हजूरी विच संध्या वेले दे सुंदर दीवान सजे सजे दीवाना विच आप जी की अमृत बाणी दे शब्द कीर्तन कथा विचार ढाडी वारा ने इतिहास गाए गए छे पुड़न साहिब जी के गाए ने समुचियां सेवा निभाउंदिया होया होइया अनेकां प्रकार दीआं गलतियां भुल्लां दी माफ़ी बख्शो गां वास्ते सुत स्पष्ट बाणी पढ़न की दात बख्शनी गुरबाणी कीर्तन कथा इतिहास का भाव आईया संगतां दे हिरदियां च वसा के करतारथ करनाई संगत की हाजरी तिल फुल भेटा की दरकर विखे कीतियां सेवावां दर प्रवान करनिया परिवारां सुख शांति चढ़ कर दाता बख्शनियां हर कीर्त कौर तंदुरुस्ती दे रोगता सुख शांति चढ़ती वास्ते परिवार अरदास बेनती है। प्यारे खालसा पंथ की चढ़ती कला करनी जेलां च बंद प्यारे गुरसिखां दी रिहाई चढ़ती कला लई संगत नूं अरदास बेनती है। आप जी दे बख्शियां खजानिया विचों कड़ाह प्रसाद की देख सज के हाजर दर प्रवान होवे प्रवान है प्रसाद संगत च वरताउण दी आग्या बख्शो। समूह बेनतियां गुरमसार प्रवान करदे बख्शो लाई श्री मुख वाहिगुरु ग्रंथ अपने सुखासन की सेवा आप बख्श करके लै लैनी।

जय कर कीरत आखिया करते का होए विचारो तित कर गावह सोहिला शिव रहो सृजनहारो तुम गावहो मेरे निरभव का सोहिला हों वारी जित सोहिला सदा सुख होए रहाओ नित नित जीड़े समालियन देखेगा देवन हार तेरे दाने कीमत ना पवै त सदाते कवन सुमार संबत साहा लिखिया मिलकर पावहु तेल देहो सज्जन असीसड़िया जहो वै साहिब स्यो मेल घर घर एहो पहुचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिया नानक से दे आवन।

विश्वे चस्या कड़िया पहरा थिति बारी माह हुआ सूरज एक रुत अनेक नानक करते के केते वेश राग तना श्री महला पहला गगन में थाल रब चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती तूप मलयान लो पावन चवरो करे सगल बन राय फूलंत ज्योति कैसी आरती होए पाव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत पेरी रहाओ सहस तव नैन नन नैन है तोहे काओ सहस मूरत नना एक तोही सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोही सब मह ज्योत ज्योत है सोए तिस दै चानन सब मह चानन होए गुर साखी ज्योत प्रगट होए ज्योत इस भावै सो आरती होए हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो अन दिनो मोहे आही प्यासा कृपा जल देह नानक सारंको होए जाते तेरै नाए वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बह भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिब मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे कर डंडाओत पुन वड्डा हे रहाओ साकत हर रस साध ना जानिया तिन अंतर हो मैं कंडा हे ज्यों ज्यों चल है चुबै दुख पाव है जम काल सह है सिर डंडा हे हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण पाव खंडा हे अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहुसोभ खंड ब्रह्मंडा हे हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड्डा हे जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा हे राग गौड़ी पूर्वी महला पंचपा करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला ईहा खाट चलो हर लाहा आगै बसन सहेला औद कटै दिन सरैणा रे मन गुर मिल काज सवारे रहाओ एहो संसार विकार संसे मह तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिस हे जगाए पियावै एहो रस अकथ कथा तिन जानी जा को आए सोई बिहज हो हर गुरते मन है बसेरा निज कर महल पावो सुख सहजे।

प्रभु सिमरत काश बिगल ना लागे प्रभु कै सिमरन आनंद न जागे प्रभु कै सिमरन पहो ना व्यापे प्रभु कै सिमरन दुख ना संतापे प्रभु का सिमरन साध कै संग सरबन दान नानक हर रंग प्रभु कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नव निध प्रभु कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध

उधारी अनक पुनः चरण करत नहीं तरे हर को नाम कोड पाव पर हरे गुरमुख नाम जप मन मेरे नानक पाव सूह कनेरे सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया लाख करोरी बंधन परे हर का नाम जपत निस्तर अनक माया रंग तेख ना बुझावे हर का नाम जपत आगावे जिह मार के जात अकेला तह हर नाम संग होत सुहेला

काशी करे छिपाय बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापै लोभ समान अंतर अगन बाहर तन सुहा गल पाथर कैसे तरे हथा।

रहत जिस पावे तिस लय लड़ लाय थान थरंतर रह समाय सो सेवक जिस कृपा करी निमख निमख जब नान करी सलोक काम क्रोध अरलो मो बिनस जाए हमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जिह प्रसाद छत्तीह अमृत खाहे

नाना प्रकार जंत कई कोट किए चर जीवे कई कोट गिरी मेर स्वरण थी वे कई कोट जाख किनर पिसाज कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगाज

समाय आप उपदेश है समझे आप आपे रत्या सब के साथ आप कि नवापन विस्तार सब कह गाह करने हार ते बिहन कह किश होय थान थरंतर कैसोय अपने चल त्याग करने हार कहो तिक करे रंग अपार मन मह आप मन अपने माहि नान कीमत कह न जाय सत सत सत प्रभु स्वामी गुर प्रसाद किने वख्यानी

मछली तड़फड़ाए। संत का दुखी भूखा नहीं राजे जो पावक, ईंधन नहीं तरापे संत का दुखी। छोटे इकेला जो बुआड़ तिल खेत माहे दुहेला, जो बुआड़ तिल खेत माहे दुहेला। संत का दुखी धर्म तेरा संत का दुखी सद मिथया, कहत कृत निंद का तुरही पया, नानक जो तिह पावे सोई थया। संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगे मिलाए सजाए। संत का दुखी सदा सहकाइए, संत का दुखी ना मरे ना जीवाइए। संत के दुखी की पूजे नासा, संत का दुखी उठ चले नासा। संत के दुख ना दृष्ट कोई जैसा पावे तैसा कोई होए। पया कीर्तन मेटे कोई नानक जाने, सच्चा सोई सब कर तिसके हु करने हार। सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभु की उस्तुत करो दिन रात, तिसे त्याव सास गिरास सब कछ वरते तिसका किया।

दर्शन सत सद बेखन हार नाम सत सद ध्यावन हार आप सत सत सब धारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभ भगता सुरत सत सत जा संता बुजन हार कहो सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जन मान्य करन करावन तिन मूल पछान्या जा के

राम राम तत् करहु बीचार दुर्लभ देखा करहु उदार अमृत बंधन हर के गुण गाव प्राण तन कह स्वभाव आठ पहर प्रभु पेखो नेरा मिटे अज्ञान बिनसे अंधेरा सुन।

अनाद अनाहत, जुग जुग एको वे सिक दूजी बहु, लखो है लखो में लख बीस, लाख ला गेड़ा आखिया है एक नाम जगदीश, एतराह पत पबड़िया चढ़िया हुए इकीस, सुन गल्ला आकाश की गीटा आई रीस, नानक नदरी पाई आए कूड़ी कूड़ा ठीस, आखन जोर चुप्पै।

लोग चौदह के बिखे जग जाप ही जय जाप आदेव नाद मूर्था प्यो सबे जय थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख पार सर्व सृच्य स्वयं भव घन पंजनहार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म धाम सु परम रहता भूत रख भेश अंगरागना रंग जाके जात पात नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुग्धाय काम आवरूप अमीक अनुसत एक पुरख भूत गर्भ गंजन सर्व भंजनाद रूप सूत अंगहीन भंगनाथ में पुरख पार सर्व लायक सर्व गायक सर्व को प्रतभार सर्वगंता सर्वंता सर्वतयन पेख सर्वशास्त्र न जाने जय रूप रंग रेख

अपंगुपमानं अनुपप्रकाशनिस्तन आनास आजान बाहुशाहन शाहु राजान राजपानान पान देवान देवपमा महान इंद्रान इंद्रबालान बाल रंकान रंकालान काल अनुभूत अंग आभा अभंगतमित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निर्भय निकाम अद्भुत प्रजन मित गत अखंड आल सकर्मा दृश्य धर्म सर्वा प्रनाढ्य अनदंड बाढ़ चाचरी शांत त्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंकरे नृनामे अकामे भुजांग प्रयाद छंद चतुर चक्र कर्ता चतुर चक्र हर्ता चतुर चक्र दाने चतुर चक्र जाने चतुर चक्र भरती चतुर चक्र भरती चतुर चक्र बाले चतुर चक्र गाले चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे चतुर चक्र माने चतुर चक्र दान्य चाचरी छंदना सत्र न मित्र न परमंग न पितर न कर्मंग न गाय अजन्मंग अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रतीस अधिस अदृश अकृश भगवती शांत त्वा प्रसाद कथते के आ शुज देसा के आ पिज बेसा के आ गंज कर्मे के आ पंज परमे के आ पिज लोके के आ सोके के भूत भरने के विभूत करना है के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुझा है के आ शोक भरने के सर्वा अपर्ण है के जगतंग कृति है के शत्रंग क्षत्रिय के ब्रह्मंग स्वरूपे के अनुभव अनुप है के आद आप आद आदेव के आप अपेव के चित्रंग भी हिन्न के एक अधिन के रोजी रजा के रही मेरे हके के पाक व्यव के गैबल गैब है के फुल गुनाह के शाहन शाह के कारण करिंद के रोजी दहद है के राज करही मैं के कर्मंग करीम के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वतर बान्य है सर्वतर दान्य है के सर्वतर गौने के सर्वतर पावने के सर्वतर देश है के सर्वतर पेश है के सर्वतर राज है के सर्वतर साजा है के सर्वत्र दीना है के सर्वत्र लीना है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देसा है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजा है के सर्वत्र राजा है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पुख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देसा है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र मान है सदैव प्रधान है के सर्वत्र जाप्या के सर्वत्र थाप्या के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंग कलीमे के परमंग फहीमे के आकल अलामे के साहिब कलामे कुसनल वजू है तमाम रजू है अमेसुल सलाम सलीकत मदाम है गरीबुल शखस्त है गरीबुल परस्त है बुलंदुल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तमाम अर्जुल निदान है हरीफुल अजीम है रजायक यकीन है अनेकुल तरंग है भेद है अभंग है अजीजुल निवाज है गरीबुल खराज है दुरुस्वरूप है त्रिमुग्ध विभुद है प्रभुग्ध प्रभा है सुयुक्त सुधा है सदैव स्वरूप है भेदी अनुप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सलाम है सदैव अकाम है निर्वाज स्वरूप अगाध है अनुप है ओंगाद रूप नाद स्वरूप अनंगी अनामे त्रभंगी त्रकामे त्रिभरगम त्रिवादे अगंजे अगाधे सुभंग सर्वागे सुसर्वा अनुरागे त्रिभुग स्वरूप है अशुज है अशुत है के नरकं प्रणास है प्रथुल प्रवास है नृक प्रवाह है सदैव सदा है विभुग स्वरूप है प्रयुक्त अनुप है नृक सुधा है विभुक्त प्रभा है नृक स्वरूप है प्रयुक्त अनुप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेख है लेख है परम है कर्म है नाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है दूत है अनास है उदास है तंध है बंध है अभक्त है विरक्त है नास है प्रकाश है निचिंत है सुनंत है अलिख है दिख है लेख है अपेख है अटाह है अगा है असंभ है अगम है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपट शांत त्व प्रसाद सर्वंगंता सर्वंगंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं तरानं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जुगता सर्वं उतार साबल शांत त्वा प्रसाद नमो नर्कनाशं नमो नर्कनाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अभंगं विभूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगा स्वरूप निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रभंगी त्रकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी रूपे न पौत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात नरसाकं श्रीक मितो मीक सदैवं प्रवाह अजाह अजाह भगवती शांत त्वा प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है अमेसुल सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है कुसुल चराग है कामल करीम है के राज करहीम है के रोजी दहद है के राज कर हिंद है गरीबुल कमाल है कुसुल जमाल है गरीबुल खराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल शिकन है हरासल फिकन है कलंक ब्रणास है समस्तुल निवास है अगंजुल गरीम है रजाय करहीम है समस्तुल सुबह है के साहिब ग्रह है के नरकंग ब्रणास है बहसुल निवास है के सरबुल गबन है महसुल रबन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परंग परमीस है समस्तुल अदीस है अदेसुल अलेख है महसुल अपेख है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है के जुरत जमाल है के अचलंग प्रकाश है के मित्रो सुभाष है के अजब स्वरूप है के मित्रो विभूत है के मित्रो प्रसा है के आत्म प्रवाह है के अचलंग अनंग है के मित्रो अभंग है मधुभा

अन भव नास मन मन प्रकाश गुन गुन प्रणाम जल थल मुदाम अंशज अंग आसन अभंग उपमा अपार गत मित उदार जल थल अमंड दिशुस पण जल थल महन दिशुस व्यंत अन भव नाथ तिरथर तुर आसा जन भ एक सदाह ओंकार आद कथनिया नाद कल खंड ख्याल गुरबर काल घर घर प्रणाम चिचर नाम अंश जगात अज जिना बात अन चंज गात अन रंज बात अन टुट भंडार अन ठटा बार आठ शर्मा ढीठ कर मरण आनंद दाता महंत हर बोल मना शांत त्व प्रसाद करुणालय है अरकाल है कल खंडन है मह मंडन है जगते सुन है परमेश्वर है कल कारण है सर्व बार है तृत के तरण है जाके करण है मन मान है जग जान है सर्वंग भर है सर्वंग कर है सर्वास है सर्वनाश है करुणा कर है विश्वंबर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है मेरे मंडस है खल खंड है प्रत्येपर है करुणा करें अजापा जपे अथापा थपे अकृता कृत है अमृता अमृत है अमृता अमृत है करुणा करते हैं अकृता करते हैं धरनी तृत है अमृतेश्वर है परमेश्वर है कृता करते हैं अमृता अमृत है अजवा करते हैं अमृता अमृत है नर नायक है खलकायक है विश्वंबर है करुणालय नृप नायक है सर्पायक है पपंजन है अरगंजन है रिपतापन है जब जापन है अकलंग कीर्तन है सर्वा कीर्तन है कर्ता कर है हरता हर है परमात्मा है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है भुजंग प्रयात छंद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेज नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो रासंग तामसंग शांत रूपे नमो परम ततंग अततंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञान नमो मंत्र मंत्र नमो ध्यान ध्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञान भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो

अजायब भूतेक जायब करीमे हरिअंग करें करीम रहीमे चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भूते स्वयं भव स्वं सर्वदा सर्वजूते दुगालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंग विभूते चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भूते स्वयं स्वयं भव स्वं सर्वदा सर्वजुगते दुगालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंग विभूते। सतनाम श्री वाहिगुरु साहेब जी। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पाशाही दसवीं स्तव प्रसाद स्वय सरावग शुद्ध समूह सिद्धांत के देख प्रयोग कर जोग जति के सूर सुरार्दन सुसुधाधिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो बात को न देखत प्राण प्रति के श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते एक रति बिन एक रक्ति के माते मतंग जरे जर संग अनुपतंग सुरंग सुवारे कोट तुरंग तुरंग से कूद पाउन के गौन को जान जात निवारे भारी भुजान के पूप लिप्त न्याप सीसना जात बिचारे एते पय तो काहा पय पूपत अंत को नांगे ही पाए पधारे जीत भरा सब देव दिशान को बाय तो ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूड जान के सुंदर हिंस ही है राज हजारे पूत भगवान के पूत कौन गनै नहीं जात बिचारे श्री पाद श्री भगवान भजेबन अंत को अंत के धाम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सुसंजम ने मनेक विसिख है वेद बुरान कतेब कुरान जमीन जमान समान के पिख है पवन आहार जति जत अर सब विचार हजार देख है श्री भगवान भजेबन भुपत एक करतीबन एक लेख है शुद्ध सपाह दुरंत बाह सुसाहना दुरजान दलेंगे भारी गुमान भरे मन मैं कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे तोर अरीर बरोर मुवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्री पद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर पार बड़े बरियार विचारे सार की धार पशैया तोर देश मिले मुवासन माते माते जान के मान मलैया गाढ़े गड़ान को तोड़न हार सो बात निचक चार लवैया साहिब श्री सबको सिरनाग जाचक अनेक सो एक दवैया दानव देव नंदन साजर भूत भगवान जपेंगे जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाट जैतुन पापन के बपुंज खपेंगे साध संप्रसन्न फ्रैजग सतर सभय अवलोक छपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरातप जान त्रिलोक राज करेंगे कोट स्नान जातक दान अनेक स्वंबर साज भरेंगे ब्रह्मेश्वर विष्णु सची पात अंत फसेजम फास भरेंगे जे नार श्री पाद के प्रास है पाग ते नार फेर ना देह तरेंगे कहा पहु जो दो लोचन मूंद के बैठ रहो भक्त ध्यान लगायो नहात फिर उलिये सास समुद्रन लोग प्रलोक गवायो बास कियो विख्यान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साज कहा सुन लिहो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्र पायो काहुल पाहन पूछ तरह सिर काहुल लिंग रटकायो काहुल कर हर अबाची दिशा में कहो पशाह को शीस नवायो को भूतान को पूजत है पास को मृतान को पूजनतायो कूर क्रिया उर्जो सब ही जाग श्री भगवान को भेद न पायो को भूतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन धायो कूर क्रिया उर्जो सब ही जाग श्री भगवान को भेद न पायो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहेब जी। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पाश।

अमरे दुष्ट सबैद मंगावो आप हादय मोहे बचावो सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सब कर तारा मोर शान करते करे सब बैरन कुवास करे पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की राहे प्यासा तुम्हें शाट कोई अवर न त्याऊं जो बार चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिया है चुन चुन सात्र हमारे मारिया है आप हादय मुझे उबरिया है मरण काल का त्रासन भरिया है वो जो सदा हमारे बच्चा श्री अस्त जू करे रशा राख रे मुहे राखण हारे साहेब संसाए बिहारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुमोपुरी चतुर्दशकंता काल पाए ब्रह्मा बवतरा काल पाए शिव जू अवतरा।

ग्रेगैठा सगरी सृष्टि खाय अचंभव आजुगा स्वरूप स्वयंभव परच्छा मेरी तुम करो सिख उबार आसिक संगरो दुष्ट जिते उठवतु तपाता सकल मलेश करो रणगाता जे आस तो जताव शरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हवे मरे पुरख जमन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब ठारे जो कल को एक बार त्या है ताके काल निकट न अह रचा हुए ताए सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्टन जाहे ने हर हव ताके ताप तनक में हर हो रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छा शवाए सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल भासते ताहे उबारा जिनर नाम तिहारो कहा दार दुष्ट दोखते रहा खड़केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दे लेहु उबारी सर्व ठावर मोह हो सहाई दुष्ट दोखते लेहु बचाई कृपा करी हम बर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सब राता केलवे के सगल दे को हरता दुष्ट दुखियन को शय करता श्रिया सुज्जा पहे दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तकाला मन वाचत फल पावे सुई दुख नाथ से व्याप्त हुई अड़िल सुने गुंग जो जाए सुरसना पावई सुने मूढ़ चतलाए चतुर्था आवई दुख दर्द भाव निकना दिनर गेरा है ओजो जाकी एक बार चौपाई को कह चौपाई संबत सत्रह सहस पणिजय अर्थ सहसवंत कहिजय भादर सुधी अष्टमी रवारा तीर्थ तीर्थ सतर्व ग्रंथ सुधारा सवैया।

जीवन सब तिसदा दिखा जे आख गवाई है, जे लोड़े सिंगा अपना कर पुनो नीच सदाई है, जे जरवाणा पर हर जरवेश करेंदी आई है, को रहना परिये पाई है, को रहना परिये पाई।

aqui. हम अवगन परे एक गुण नाही अमृत शाड बिख बिखाई माया मोह परम पै भूले सुतदारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की

बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीवों।

बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कह सेवक जन मानै।

तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। तीर्थ नावन जाओ तीर्थ नाम है। तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुग जुग अटल अमृत दे दाते, नाम दे जहाज, कलयुग दे बोहत। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरां दी गोद विच सवाए मान, सत्कार योग साध संगत जीओ, आओ बहुत ही वटभागे हो जो सतगुरां दी गोद विच बैठ के अमृत वेले तो सिमरन अभ्यास नितनेम आसा की वारदा कीर्तन सरवण कीता है। जो अमृत वेले सतगुरु जी का हुक्मनामा बख्शिश होया है, क्योंकि जिस वक्त प्रकाश किया जाता है तो सब तो पहली मर्यादा है हुक्मनामा लेना। यह मर्यादा हरिमंदर साहब तो आरंभ हुई है, क्योंकि जिस वक्त महाराज जी ने हरिमंदर साहब दे विच पहला प्रकाश करवाया, ये जड़ी गल है 1604 दी है। गुरु ग्रंथ साहिब दी पहली बीड़ रामसर दे स्थान ते बजी सी, इत्थे पहली बीड़ तैयार हुई है। ते सतगुरु जी ने रामसर तो लैके हरिमंदर साहिब तक जिथे पहला नगर कीर्तन सजाया गया, उत्थे मेरे साहब ने बाबा बुढ़ा साहब नूं पहला ग्रंथी सिंह सतगुरु जी की ताबिया दे विच बिठाया। ते पहला हुक्मनामा जिहड़ा लिया वह हरिमंदर साहब दे विच लिया सी। साहिब बुढ़ा खोलो ग्रंथ, लिहो आवाज सुने सब पंथ। ते पहला हुक्मनामा बाबा बुढ़ा साहब जी उस समय फिर लेंदे। सूही महला पंजवां, संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावन आया राम। उस समय तो यह दुनिया का पहला इतिहास है भी किसी ग्रंथ के विचों हुक्मनामा लेना। ग्रंथ बहुत ने दुनिया के विच, एक हुंदे ने धार्मिक ग्रंथ, उन्हां दी गिनती बहुत है, पर गुरु ग्रंथ एक ही है। ग्रंथ बहुत ने याद रखियो, पर जिन्हों गुरु पदवी मिली है ना, पहला भाई लैना सी पर लैना गुरु अंगद कदों बने है, जदों विच जोत टिकी है। जामे बदलते रहे हैं, जामा कहिंदे ने पोशाक नूं। गुरु नानक साहब तो बाद शब्द नहीं बदलिया, पोशाक बदली, जामा बदलिया, शरीर बदलिया। गुरु अंगद साहब का शरीर होर सी, गुरु अमरदास जी का शरीर होर सी, पर जोत ओहा जोत ओही है। जुगत साए सह काया पे पलटी है। इस तरह किसी ग्रंथ नूं गुरु नहीं आखिया जाता, क्योंकि जिहड़ी रब्बी जोत है, जिहड़ी गुरु जोत है, वह केवल गुरु ग्रंथ साहिब दे विच है। ते ग्रंथ नूं फिर गुरु आखिया, आग्या पई अकाल की तबे चलायो पंथ

खोज शब्द मैं ले हो, खोज शब्द मैं ले हो। कहिंदे भाई जे रब नूं मिलना ते की करो, खोज शब्द मैं ले हो। ये शब्द दे विच्चों लभो तुहानूं रब दे दर्शन होणगे। किद्दां होणगे? क्योंकि शब्द ने तेरे विच ही रब दिखा देना। तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। आओ अज जो सतगुरु जी ने पावन हुक्मनामा बख्शिश किया है, शब्द की विचार के नाल जुड़न का यतन करिए। एक बार सारी संगत आख

बस तुम मात पिता हम बारक ते तुमरी कृपा मैं सुख कले कोई न जाने तुमरा अंत सगले

वेद प्रासिम सुद आखर कीने राम नाम के आखर किनका एक जह जी बसावे ताकि महिमा गणी न आवे पाखी एक दस तुहार गो नानक संग मोह धारो सुखमी।

दुखलथा नाम के महिमा संत बसे संत प्रताप दो सनते संत का संग बड़ भागी पागे संत की सेवा नाम ते आये नाम तुल कछव न होए नानक गुरमुख नाम पावे जन को श्लोक बहु सात्र बहु सिमृति पेखे सर्व टंडोल पूज सनाही हर हरे नानक नाम मोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब त्यान खट सातर सिमत बख्या जोग व्यास करम तम किरिया सकल त्याग मन बदे फिरिया अनक प्रकार के बहु जतना पौन दान होमे कर रतना सी कटाए होमे कर राति वर्तने करे बो भाती ना तुल राम नाम बेचार नानंग मुख नाम जपी एक बार नाम खण पृथ्वी फिर जीव मां दात पिस तीव अगन मह उत्पराण अनक अश्व हैवर पूंदान न्योली कर्म करे बवास जय मर संजम साधन निमक निमक सी कटावे तो पी होमे मैल न जावे हर के नाम संत कृष्ण आहे नानंग गुरमुख नाम जत गत पाहे मन कामना तीर दे छुटे गर्गवान न मन ते उठे सोच करे दिन सा रात मन की मैल न तंते जात इस देह को बहु साधना करे मन ते कबू न बिखा टे जल धोवे बोधे उनीत सुध कोय काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उतरे पतत बहुमूच बहुत स्याण जमका पाओ व्यापे अनक जतन का तिस्ना त्रापे पेख ने अगन बूझे कोट पादर गि सिजे छुट सुनाई हो प्याल मोह व्यापे माया जाल अवर कर तू सगली जम डाने गोविंद भज तलनी माने हर का नाम जत दुख जाय नानक बोले सह सबाई

जे को जन्म मरण ते डरे साजना के सरनी परे जे जन को प्रादर्श प्यासा नानक ताके बलबल जासा सकल पुरख में पुरख प्रधान सा संग जाका मिट अभिमान आपस को जो जाने नीचा सो गहने सब ते उचा जाका मन हो साल किरी ना हर ना तन कटका चीना मन अपने ते बुरा मटाना पेखे सगल सिर साजना सुख दुख जन साम दिता नान पा पुण्य लिपा निर्दन को तन तेरो नाव नथावे को नाव तेरा थाओ नमाने को प्रतिरो मान सल कुटा को देवदान।

सर्व धर्म में से धर्मो हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल किरिया में उत्तम क्रिया साह संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्यम में उद्यम भला हर का नाम जपो जी सदा सगल बाणी में अमृत बाणी हर को जसों रसन बखानी।

दस वस्तु ले पासे पावे एक वस्त कारने बेखोट गवावे एक पीना दे दस पियर ले तो मूड़ा को कहां करे जेठा कसो नाही चारा ताको कीजे सब नस्कारा जाके मन लागा परमीठा सब सोह तहो मन बूठा जे जन अपना हुक्म नाया सब थोक नानक तन पाया अगन सब अपनी दे रात खात पी बरत नंद उलास अपनी अमान किश बार सिले अज्ञानी मन रोस करे।

ब्रह्मज्ञानी सल केरी नाया तमरस ब्रह्मज्ञानी चीना ब्रह्मज्ञानी की सब उपर माया ब्रह्मज्ञानी तकश बुरा न पाया ब्रह्मज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी।

ब्रह्मज्ञानी के मन परमानंद ब्रह्मज्ञानी का सदा आनंद ब्रह्मज्ञानी सुख सहज निवास नान ब्रह्मज्ञानी का नाहीं बनास।

कई कुर्मा के साथ संग पार दाम ते लागा रंग जन को होए आसु प्रसान नानक ते जसरा तन तन कई कोट खानी हर कांड कई कोशकार ब्रह्मांड कई कोट होए अवतार कई ज्योत कीनो बस्तार कई बार पसरो पसार।

सगले विस्तारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक स्वर्ग फिर फरे अवतार अनक जतन कर आत्मे द्रवे हद्रगे को कैसे गवे आपस को जो पला कावे तिसे पलाही निक न आवे सर्व के रहन जा का मन होए कौ नानक ताके निर्मल सोए जाबला जाने मोत कछ होए तब इसको सुख निकोए जाबे जाने मैं कछ करता तबला गर्व जोन में फिरता

कर्ण क्रामन करने हार इसके हद कहां बेचार जैसे दृष्ट करे तैसा होए आपे आपा प्रसोए जो कुछ की

संत सरन जो जन प्रे सो जन युद्ध नहार संत के निंदा नानका बौर बौरे अवतार अष्टपदी संत के दुख न्याजा करे संत के दुख जमते नहीं छूटे संत के दुख सुख सा जाए संत के दुख नरक में पाए संत के दुख मत होए मलीन संत के दुख शोभा देहीन संत के हतक रखे न कोए संत के दुख तान पृष्ठ होए संत कृपाल कृपा जे करे नाक संग निंदक पीतरे संत के दुख ते मुख पावे संतन के दुख का सो लवे संतन के दुख सर्व जोन पाए संत के दुख तरक जोन करमाए संतन के दुख तिश्ना में चले संत के दुख सब को छले संत के दुख ते सब जाए संत के दुख नीच न चाए संत दुखी का था को नाओ नानक संत पावे ता ओ पीगत पाहे संत का निंदक मा तारी संत का निंदक टिक न पाई संत का निंदक मा त्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज तई संत का निंदक दुखिया दीन संत के निंदक सर्व रोग संत के निंदक सदा बिजो संत के निंदक सदा बिजोग संत के निंदा दुख में दुख नानक संत पावे ता उसका पे होए मोख संत का दुखी सदा पवित संत का दुखी किसे निमित संत के दुखी को डान लागे संत का दुखी को सत्यागे संत का दुखी महंकारी संत का दुखी सदा बेकारी संत का दुखी जन्मे मरे संति दुख ना सुखते तहे संत का दुखी को नाही ठाओ नानक संत पावे ता लय मिलाए संत का दुखी अत पीत टूटे संत का दुख का न पहुंचे संत का दुखी को उद्यान पर माये संत का दुखी उजड़ पाए संत का दुखी की संत का दुखी अंतर के थोता संजो सास बिना मृता के लोता संत का दुखी की जड़ किस नाहे आपन भी जापे ही खाए संत का दुखी को अपन राखन हार नानक संत पावे ता लाए उबार संत का दुखी यो बैलाए ज्यो जल ब्यों मच्छी तड़फाए संत का दुखी भूखा नहीं राजे ज्यो पाप इधर नहीं तड़पे संत का दुखी छुट्टे

संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत का दुखी संत के दुखी को दरगे मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाइए, संत का दुखी ना मरे ना जवाइए, संत का दुखी की पूजन आसा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत का दुख न दृष्टे कोय, जैसा पाए तैसा कोई होए, पया कितना मेटे कोय, नानक जाने सच्चा सोए, साब घट तिस्को करने हार, सदा सदा तिस्को नमस्कार, प्रभ की युत करो दे रात, से त्यावो सास ग्रास, सब कुछ वरते तिस्या किया, जैसा करे तैसा को थिया, अपना खेल अब करने हार, दूसर कौन कहे विचार, जिसनु कृपा करे तिस अपना नाम दे, बड़ भागी ना

चरण चलो मार्ग बिंद मिटे पा जपे हर बिंद कर करम सरना कथा हद्रगे नानक उजल मथा वडभागी ते जा जग माए सदा साह के गुण गाहे राम नाम जो करे विचार से तन मंत गणे संसार मंत्र मुख बोले हर मुखी सदा सा जानो ते सुखी एको एक एक पछाने ए तुत कियो सो जे जाने नाम संग जसका मन मान्या नानक तिने निरंजन जानिया गुर प्रसाद अपनाप सोजे तिसके जानो तिसना बूझे साध संग हर जसका सर्व रो त्यो हर जन रहत

अनंद्र उमंग साजा के सर्व सो सुने करता के राज में राज, राज में राज जोग में जोगी तप में तपिस्कृत में भोगी त्याय त्याय भक्तो सुख पाया नानक तुर के अंत न पाया। जाके लीला कीमत नाए सकल दे हरे अब गाये पिता के जन्म के जाने पू सक।

भई एक रात प्रात गए मंत्र न्यंत्र एक प्रभ जाता गुरप्रसाद नानक एक जाता श्लोक पित पित प्रभ आया प्रयत सरनाय नानकी प्रभे ते अपनी भक्ति लाए अष्टपति जाचक जा जाचक

सर्व बैकुंठ मुक्त मोक पाए, एक निमख के गुण गाए, अनक राज भोग बड़े आई, हर के नामे कथा मन पाए। बहु भोजन का प्रसंग रसना जपते हरा नीत, भली सो करनी सोभा।

संत संगत प्राप्ति था नाम प्रभु का लागा मिथा सगत समिग्री इस कठमाए अनक रंग नाना दृष्टाए नौ निद प्रभुका नाम देही मैं इसका बसाम सुन समाद अनंत नाद कह न जाय अचर्ज बसमाद तिन देखा जसाब दिखाई नानक तेज सोजी पाए सो अंतर सो बहानंत कट कट व्यापर भगवंत तरन मै कस प्याल सर्वलो पूर्ण प्रतपाल बंत पर्वत है पार ब्रह्म जैसी अज्ञा तैसा कर्म पुण पानी बसंतर माए चार कुंड तिथ समाए तिस्ते पहनाई कोठाओ गुर प्रसाद नानक सो पाओ वेद प्राण सिमत बुज वेद प्राण सिमत मैं देख सस्य सुन त्रमय एक बाणी प्रभ की सबको बोले आप डोल न कबो डोले सर्व कला कर खेले खेल मोह न पाये गुणा मोल सर्व ज्योत में जाके ज्योत तार स्वामी उत्पोत गुर प्रसाद परम का नास नानक तिन मैं ए बसास संतना का पिख सब ब्रह्म संतना के हृदय सब तम संतना सुने सो बचन सर्व्यापी राम संरचन जन जाता तिस्किय रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो सोई सुख माने कर्ण क्राम नहर प्रजाने अंतर बसे बार पियोई नानक दसन दे समोही आप सत किया सब सत तिस पवी सगली उत्पात तिस भावेता करे विस्तार तिस भावेता एक ओंकार अनकल लखी न जाए जिस भावे तिस लाए मिलाए कम निट कम कहिए दूर आपे आप भरपूर अंतर्गत जसाप जनाए नानक तिजन आप जाए सर्व भूत आवरतारा सर्व नैना पिख नारा सगल समरे जाकत ना आप जसा भी सुना।

आज जंजाल बेकार तेरे ते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद प्रतारी नानक ने भी खिप हमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान कग चीत सुखमनी सहर गोबिंद गुण नाम जस मन बसे सुहोत दान सर्व

महतो दूसरा दो दाई दया खेले सगलो जगतो चंगियाईया बुराईया बाते धर्म दूर करमी आपो अपने के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।